0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: वोटांग बोला तेरे मिशी बना दिले आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप के तो आज ये योम दे कुल कुल बोला बीते पिलोट ये तो और जाने ना फिर तू चाइना कु तो तुमने सिना फाना बार ना क्यों बना तू चाइना ली बे जान रखते ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बीते बी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तेरा रात सुबिसी रबोला बीते बी चाइना सा जो वो तो बोला साफ चाट रे पास
2: साफ तो बेन यंग के कंजान वो तुम्हें ना येरा मत बेन तुम पुल्टो ना फाइन पुल्टो ना मार तो फाइन पुल्टो ना पता लगा ना मैं जेट केट से फिर उनको जाना मिस जो क्या था तो
3: ये सब अंशुने तो मत आकर सियारा लोएन मंडुसी मत आकर ये सब यो अंबाल पंसुन मत आकर सियारा फाम किलेरे तो ना कोरोना की पुस्ती दे वो तुम सही Misalnya cara tu pun sulit kan asam jadi mesti jerena macam siapa ni? Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Mungkin bah mampu sulit tu pada kasih. Biasa mana nasa tu orang sana ni ular ya tu pada kasih cara. Dan bah nanti apa yang bisa pada kasih cara tu pun saya.
4: Kejoran jenah marah nombulah, kau jenah jenah. Datang bertunggah saya je, yang desa ke masa kalau tuan dekul kuli. Kau dah kacara tatan. Alas tatan aku semua ke, kita sahian leksis. Untuk nasarai nak kamu semua, dia kuat. Dia cica untuk fana-fana nak kul kuli, nunggu dari sini. Sebelum masuk fana kan fana-fana nak lalu, dia cica batin ni. Semasa macam ni, ada macam pro punya sahaja ini kan, sahaja kan malaga tu. Aloam bayu, sentam gaya, malaga sahaja. Ifa yelah nuncari nak balik malaga. Tosai nak milu fainya kan? Hah? Kalau semua tosai nasi nak famari kan? Dia sakit turun pasakan, abe. Manois, siapa mano betul pasakan? Tersangki, sunsu dari losas macam macam, hello, semarang apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.